शांति र विकास का लागी हमरो आवाज स्टूडियो फार फार अवे रेडियो रेडियो चौताई रेडियो चौताई रेडियो चौताई 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: तिमी त मेरो परान हो नि, तिमी बिना जिन्दगी कहाँ चल्छ?
1: चिनी भयो नि हामी एक हुन सक्दैनौ। के रे
0: ल किन के रे सेक्छ र?